0: क्या खूब चा चा चा ओ ग्रेट
1: डू डू
0: चा चा चा किड़त की तई ताम की ताम ताम की ताम ताम की ताम ओह गॉड मिस्टर नायडू दिस इज नॉट द भरतनाट्यम दिस इज द